तुम हथियार थोड़े रखते हो या बहुत, घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है बशर्ते के समझो। अगर माल गनीमत आसानी से हासिल होने वाला और सफर भी हल्का होता तो ये तुम्हारे साथ शौक से चल देते, लेकिन मुसाफत इनको दूर दराज नजर आई तो उज्र करेंगे और अल्लाह की कस्में खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ जरूर निकल पड़ते। ये इस तरह अपने आप को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह जान। ये झूठे हैं। अल्लाह तुम्हें माफ करे, तुमने पेशतर इसके कि तुम पर वो लोग भी जाहिर हो जाते जो सच्चे हैं और वो भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं, इनको इजाजत क्यों दी? जो लोग अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे इजाजत नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें, और अल्लाह परहेजगारों से वाकिफ है।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Because that is how the democratic countries work, as per the constitution. Under the framework of law, where I started my presentation, that there is one thing that we need to harden the state, and the hardening of state means a state which is run by the constitution and law, not as per one's whims and wishes. Or this country, which is good governance administration, ke liye, better model ke liye baat karne ko tayar na, ke karenge, karni chahiye. Let's find it, or will of the people ke mutabik isko resolve karna.
5: नवन सूबनि या इंतिज़ामी यूनिट्स बाबति मोहसिन नकवीअ जो बयान संदसि ज़ाती राय आहे. इन बाबति फ़ैसिलो असांखे न पर आवाम खे करणो आहे. मुल्क जी आबादी चवण ते वधी वई आहे. सूबा साॻियाई चार ई आहिनि. 1972 में आबादी 7-8 करोड़ हुई, हाणे 25 करोड़ आहे. कुझु सोचणो पवंदो. आबादी एतिरी वधी वई आहे जो माण्हू फ़ैसिलो कंदा त अॻिते कीअं हलणो आहे. सुठी हुकुमरानीअ लाइ इंतिज़ामी रीसेट जी ज़रूरत आहे त थियणु घुर्जे. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जी न्यूज़ ब्रीफिंग. DGISPR चयो आहे त आईन मुताबिक़ फ़ैसिला हल करे सघजनि था, आवाम जी राय वठणु घुर्जे. अवाम गवर्नेंस मां मुतमैन आहे त ठीकु, मुतमैन नाहे त आईन मुताबिक़ फ़ैसिलो करे. पाकिस्तान जी सिक्योरिटी लाइ सुठी हुकुमरानी ताईं अहम आहे. मसइला हल न थिया त हुन जो मतिलबु इहो आहे त सुठी हुकुमरानी लाइ कुझु न कुझु करणो पवंदो.
4: हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे. हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल

0: आहिनि ही गैर कानूनी कारोबार जे परमिट ऐं सूबे जे बजट मां हिसो घुरनि था। चवनि था त हिसो न ॾींदो त दहशतगर्दी कराईंदा। उहे माण्हू लेविस फोर्सिस खे बि पंहिंजे सरदारी फोर्स सम्झनि था। ही चाहिनि था त बलोचिस्तान अॻिते न वधे। डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बलोचिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी जा सबूत मीडिया खे ॾेखारे छॾिया। डी जी आई एस पी आर चयो त ॼाणी वाणी तासुर पखेड़ियो पियो वञे त बलोचिस्तान जूं हालतूं ख़राब आहिनि। दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियुनि जी का बि गुंजाइश न आहे। दहशतगर्द रियासत जे साम्हूं झुकनि, ॿी सूरत में ख़तम कया वेंदा।
1: बदकिस्मतीअ सां असां हार्ड स्टेट न आहियूं। हार्ड स्टेट जो मतिलब अहिड़ी रियासत आहे जिते आईन ऐं कानून सभिनी लाइ बराबरि हुजे, जिते समूरा मामला आईन ऐं कानून मूजिबि थियनि। हार्ड स्टेट जो मतिलब इहो आहे जिते का बि अछराफ़िया न हुजे। हार्ड स्टेट जो इहो मतिलबु हरगिज़ न आहे त मिल्ट्री रियासत हलाईंदी हुजे। डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त रियासत सां वफ़ादारी हर शहरीअ जो बुनियादी फ़र्ज़ आहे। रियासत आहे त असीं आहियूं, रियासत आहे त सियासत आहे।
2: What is anything common between India and Afghanistan? So I DNA. The only thing common amongst them is terrorism. Unki diplomacy usi ka hai. Isliye aap dekhe ki what is common between Fitnal Hindustan and Fitnal Khawarij? Nothing.
0: भारत ऐं तालिबान जो डी एन ए हिकु आहे। भारत हका ऐं अफ़गान तालिबान उन जा ग़ुलाम आहिनि। अफ़गान तालिबान दहशतगर्दनि खे कारोबार तौरु इस्तेमालु करे रहिया आहिनि। आम अफ़गान शहरी मौजूदा तालिबान हुकूमत जे पॉलिसियुनि सबबि ॾुखियाईनि जो शिकार आहिनि। अफ़गान तालिबान हुकूमत जो तर्ज़ अमल इस्लामी तालीमात मुताबिक़ न आहे। उहे फतवाऊं जारी करे मुस्लमान खे क़तलु कराईंदा आहिनि। डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त अफ़गान तालिबान हुकूमत भारतीय जनता पार्टी ऐं आई आर एस एस जो नज़रियो साॻियो आहे। फितनतुल हिंदुस्तान ऐं फितनतुल ख़वारिज जा सरपरस्त आई आर एस एस ऐं हिबतुल्ला आहिनि। अफ़गान वज़ीर पंहिंजे पीओ भारत खे रिपोर्टूं ॾियण वेंदा आहिनि।
2: शहीद तो शहीदों के बारे में जो की जो उन्होंने की, आई थिंक वो डेप्लोरेबल है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जैसे हम कहें ना नाकाबिले फहम है। उसकी वजह यह है कि जो शहादत है ना और शहीद, वो पाकिस्तान की फौज की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके बहादुर बच्चे उधर जाके वतन का दफा करते हुए शहीद हुए, जिनको बातचीत करते हैं कि डेड बॉडीज की उन्होंने बात की, उनके जज्ते खाकी की बात की, तो उनकी शहादत के बारे में आप ये बात करें और आप वो बात करें जो कि हिंदुस्तान के जिस बयानियों को चलाना चाह रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी, अपना राइट ऑफ लाइफ, आपके राइट ऑफ लाइफ के लिए दिया। उसके बच्चे नहीं होते, उसके माँ बाप नहीं, उसकी खुशियां, उसकी ख्वाहिशात नहीं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वाई वुड समवन सी इट।

कयूं वयूं उहे भारत बयानी जहिड़ियूं आहिनि। पाक फ़ौज जे तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरीअ जो JUI सरबराह जे बयान ते रदेअमल। DG ISPR चयो त मोहतरम सियासतदान खे चवां थो त शऊर ॾियो, माण्हुनि खे मुंझायो न।

0: जी रेड लाइन आहे। सरहद ते बीठल सिपाही घर माउ पीउ ऐं ॿार छॾे पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त पियो करे। सिपाही असांजो फ़ख्रु आहिनि, उहे कंहिं सियासी बहस जो निशानो न बणजनि घुरिजनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी जो वीडियो पैगाम। बिलावल भुटो ज़रदारी चयो आहे त शहीद फ़ौजियुनि ऐं पुलिस अहलकारनि जे क़ुर्बानीुनि खे कॾहिं बि विसारे नथो सघिजे, जेके पंहिंजो अॼु असांजे सुभाणे लाइ क़ुर्बान पिया कनि। असांजी ज़िमेदारी
1: साहब ने मैंने सुना था उनका बयान, मैंने आज कवर भी हुआ है मीडिया में, बहुत ज्यादा देखा है। मुझे नहीं पता कि उनके इशारा किस तरफ था। ये जो तजवीज उन्होंने दी वो घुसी पिटी तजवीज है। एक जो बहुत सारी तजावीज दी है उनमें से एक ये दी है, लेकिन ये ऐसी एक जिसको अभी भी सिंध की सूफियों की धरती के लोग कबूल नहीं करेंगे। नौजवानों

0: आगे बढ़ के इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो किसी भी तरीके से कॉकरोच नहीं है, इस मुल्क के मुस्तकबिल के मेमार है।
1: सूफिन की धरती सिंध जा मानो कें भी सूरत में नवा सूबा कबूल न कंदा। नौजवान मुल्क जो मुस्तकबिल आयन हुए काकरोच नथा थी सगन। सिंध जे वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह जो घरू वजीर मोहसिन नकवी जे बयान ते रद्द अमल। भिट शाह में मीडिया से गालाइंदे वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह चयो त नवन सूबन जी गाल का नई ना है, पर आवाम जो सिंध जो आम या तजवीज कें भी सूरत में कबूल न कंदो। हैदराबाद सखर मोटरवे के पैसों की खुर्द बुर्द बाबत शायद गवर्नर वट दुरुस्त जान ना इन मामले थी हुई है, कुछ पैसा भी रिकवर थिया हुआ। ईरान चिड़ डारे रो वायदा करे फिरी वेंदो आए। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान ते वड़ा हमला करने जो हुकुम दई छड़ियो, अमरीकी मैगजीन जी रिपोर्ट। सदर ट्रंप जे हुकूमत ईरान खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू थी वही आए। हमलन में ईरान जा पावर स्टेशन से फौजी तनसिबियात अहम हंद तबाह कया पा वन। सदर ट्रंप है तो ईरान ते हमला तेसी तई जारी रहा जेस तई वो हथियार फिटा कर अमन की खिरियात न तो घुरे।
2: वजीर आजम पारां गज़ा अमन मनसूबे तहत हथियार करण वारे अमल ते अगबराई जी आजियां। अमरीका मिस्र कतर ऐं तुर्किया जे कोशिशुनि जी तारीफ़। शहबाज शरीफ चयो आहे त अमरीकी सदर ट्रंप जे दिलराणे क़यादत में बोर्ड ऑफ पीस लाइ अहम कामयाबी आहे। उमेद आहे उहे कोशिशूं फ़लस्तीनी अवाम खे हक़ ख़ुदायत ॾियण तरफ़ वठी वेंदियूं। सियासी अमल जो नतीजो आज़ाद ऐं ख़ुदमुख़्तियारी फ़लस्तीनी रियासत जे क़याम जी सूरत में निकिरणु घुरिजे। फ़लस्तीन जी आज़ाद रियासत 1967 खां पहिरियां जी सरहदुनि ते ॿधल हुजे।
1: महांगाई सटियल अवाम मथां हिकु ॿियो वार। हुकूमत हिकु महीने लाइ LPG महांगी करे छॾी, फी किलो क़ीमत में 13 रुपया इज़ाफ़ो। ओगरा जे नोटिफिकेशन मूजिबि LPG फी किलो क़ीमत 241 रुपयनि मां वधाए 254 रुपया कई वई। घरेलू सिलेंडर 2849 रुपयनि मां वधाए 3001 रुपए जो थी वियो।
2: हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में मामूली लात करे छॾी। डीज़ल 6 पैसा ऐं पेट्रोल 12 पैसा फी लीटर सस्तो कयो वियो। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि डीज़ल जो नओं अघु 392 रुपया 38 पैसा ऐं पेट्रोल जो नओं अघु 336 रुपया 3 पैसा फी लीटर मुक़ररु। पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नवां अघु 3 अगस्त ताईं लागू हूंदा।
1: शहदाद कोट भरसां वेन ऐं कार विच में आम्हूं साम्हूं टकर जे नतीजे में ॿिनि मासूम ॿारनि समेत 3 ॼणा फोत, औरतुनि समेत 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। मोटरवे ते हादसे में 2 सालनि जो नकीबुलाए पठाण, 3 सालनि जो रहमान बिरोही ऐं 25 वरियनि जो इमरान मंगी हयाती विञाए वेठा। फोतुनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी तालका इस्पताल शहदाद कोट मुंतकिल। न्यू सईदाबाद भरसां ॻोठ बागो खान जमारी वटि बि मुसाफ़िर वेन ऐं ट्रक विच में खौफ़नाक टकर। हादसे में हिकु मुसाफ़िर ग़ुलाम रज़ा लाशारी फोत, जॾहिं त 9 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया।

0: हैदराबाद में कौमी अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक जे सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ अयाज़ लतीफ़ पले जो जे अॻवाणी में एहतजाजी रैली। सिटी गेट खां प्रेस क्लब ताईं निकितल रैली में औरतुनि, ॿारनि ऐं नौजवाननि जे वॾे अंग में शिरकत। अयाज़ लतीफ़ पले जो चयो त सिंध विरहाइण या वसीलनि ते कब्ज़े जूं सभई साज़िशूं नाकाम बणायूं वेंदियूं। धोखे सां जलालपुर कैनाल खे छहनि कैनालनि वारे मनसूबे खां धार करे शामिल कयो वियो। फौरी तौर सिंध दुश्मन मनसूबा ख़तमु करे सिंध खे पंहिंजा हक़ ॾिना वञनि।
1: इस्लाम कोट जे ॻोठ में बरसाति दौरान खिवण किरण जे नतीजे में 3 ॼणा फोत, 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। इलाइक़े वासियुनि मूजिबि ॻोठाणा ॿनीअ में कमु करे रहिया हुया त मथनि विज किरी पई। फोतनि में ॻोठ कड़ोवासी साजन मेघवाल, संदसि पुटु अमृत, ॻोठ बोरले मोहम्मद शाह वासी सैद ताज मोहम्मद शाह शामिल, जॾहिं त 2 ॻोठाणा पुनल ओठो ऐं उमर ओठ ज़ख़्मी थी पिया। नगर पार्कर भरिसां बि बरसाति दौरान खिवण किरण सबबि 30 ॿकरियूं मरी वियूं। ॻोठ बरवाड़े में बरसाति दौरान विज किरण सबबि पोरियत बगड़ो भील जूं 30 ॿकरियूं मरी वियूं।

0: हुसैनाबाद टाउन में एक महीनो अग छिथे कुत्ते जो डड़ियल निगर वैक्सीन लगण बावजूद फोत पंज वीरन जो रायान कलीम हुसैनाबाद में छिथे कुत्ते जे डड़न सबब जख्मी थियो वासन जो चवण आहे त रायान खे सिविल अस्पताल में वैक्सीन जो पूरो डोज लगरायो पर उन बावजूद संदसि सिहत में सुधारो न आयो ऐं ज़िंदगी जी जंग हाराए वठो
1: मेहड़ में तालके अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड जो कत्ल केस दाखिल जवाबदार गिरफ्तार न थी सकया गोठ शेणो जो दड़ो रवासी मकतुल रुस्तम उर्फ सागर खोसो जे भा सुधीर अहमद के फरियाद ते पंज जणन खिलाफ केस दाखिल कई वयो एफआईआर में सद्दाम मुर्तजा मोतबर रसूल बख्श सिंगार ऐं मोहम्मद अकबर खोसे के नामजद कयो वयो

पासे में तेज बरसात कारूं जरता गोर दड़ो भटियाणे वही नयूं वही आयूं बरसात खां पोइ कारूं जर जो फितरी हसन निकरी पियो मारुणनि में सराई।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: अंडरस्टैंडिंग और बॉडी एक उनकी इन्फॉर्म अंडरस्टैंडिंग है बिकॉज ही इज बीन डीलिंग विद लॉट ऑफ इश्यूज. उनका ये पर्सनल है जिसकी उन्होंने राय दी है एंड ही हैज अ राइट टू गिव हिज ओन ओपिनियन इन द वे दैट ही फील्स अप्रोप्रिएट. उसके लिए क्या आपको छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जरूरत है? इट्स ए वेरी वैलिड क्वेश्चन कि आपकी आबादी इतनी बढ़ गई है, आपने इसे कम करना है, ज्यादा करना है, अवाम ने फैसला देना है इसका. मैंने तो यहां फैसला नहीं देना. नोबडी कैन इम्पोज इट. इट इज द विल ऑफ द पीपल. गो टू द पीपल एंड आस्क देम. Because that is how the democratic countries work, as per the constitution, under the framework of law. Where I started my presentation, that there is one thing that we need to harden the state, and the hardening of state means a state which is run by the constitution and law, not as per one's whims and wishes. Or this country, jo ke good governance administration ke liye, better model ke liye baat karne ko tayar na, ke kya karenge, karni chahiye. Let's find it, or will of the people ke mutabik isko resolve karna.
5: नवन सूबनि या इंतिज़ामी यूनिट्स बाबति मोहसिन नकवीअ जो बयान संदसि ज़ाती राय आहे. इन बाबति फ़ैसिलो असांखे न पर आवाम खे करणो आहे. मुल्क जी आबादी चवण ते वधी वई आहे. सूबा साॻिया ई चार ई आहिनि. 1972 में आबादी 7-8 crore हुई, हाणे 25 crore आहे. कुझु सोचणो पवंदो. आबादी एतिरी वधी वई आहे जो माण्हू फ़ैसिलो कंदा तक ते कीअं हलणो आहे. सुठी हुकुमरानीअ लाइ इंतिज़ामी रीसेट जी ज़रूरत आहे त थियणु घुर्जे. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग. DGISPR चयो आहे त आईन मुताबिक़ फ़ैसिला हल करे सघजनि था. अवाम जी राय वठणु घुर्जे. अवाम गवर्नेंस मां मुतमिन आहे त ठीकु, मुतमिन न आहे त आईन मुताबिक़ फ़ैसिलो करे. पाकिस्तान जी सिक्योरिटी लाइ सुठी हुकुमरानी ताईं अहम आहे. मसइला हल न थिया त हुन जो मतिलबु इहो आहे त सुठी हुकुमरानी लाइ कुझु न कुझु करणो पवंदो.
4: हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे. हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें, जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे. डोंट वांट टू टॉक, वी विल टॉक टू द एक्चुअल स्टेक होल्डर.

0: कराईंदा उहे माण्हू लेविस फोर्सिस खे बि पंहिंजे सरदारी फोर्स सम्झनि था। हीउ चाहिनि था त बलोचिस्तान अॻिते न वधे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बलोचिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी जा सबूत मीडिया खे ॾेखारे छॾिया। DGISPR चयो त ॼाणी वाणी तासुर पखेड़ियो पियो वञे त बलोचिस्तान जूं हालतूं ख़राब आहिनि। दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियुनि जी का बि गुंजाइश न आहे। दहशतगर्द रियासत जे साम्हूं झुकनि, ॿी सूरत में ख़तमु कया वेंदा।
1: बदकिस्मतीअ सां असां हार्ड स्टेट न आहियूं। हार्ड स्टेट जो मतिलबु अहिड़ी रियासत आहे जिते आइन ऐं कानून सभिनी लाइ बराबरि हुजे, जिते समूरा मामला आइन ऐं कानून मूजिबि थियनि। हार्ड स्टेट जो मतिलबु इहो आहे जिते का बि अछराफ़िया न हुजे। हार्ड स्टेट जो इहो मतिलबु हरगिज़ न आहे त मिल्ट्री रियासत हलाईंदी हुजे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त रियासत सां वफ़ादारी हर शहरीअ जो बुनियादी फ़र्ज़ु आहे। रियासत आहे त असीं आहियूं, रियासत आहे त सियासत आहे।
2: What is anything common between India and Afghanistan? So I DNA. The only thing common amongst them is terrorism. Unki diplomacy bhi usi tarah hai. Isliye aap dekhe ki what is common between Fitnal Hindustan and Fitnal Khawarij? Nothing.
0: भारत ऐं तालिबान जो DNA हिकु आहे। भारत आका ऐं अफ़गान तालिबान उन जा ग़ुलाम आहिनि। अफ़गान तालिबान दहशतगर्दनि खे कारोबार तौरु इस्तेमालु करे रहिया आहिनि। आम अफ़गान शहरी मौजूदा तालिबान हुकूमत जे पॉलिसियुनि सबबि ॾुखियाईनि जो शिकार आहिनि। अफ़गान तालिबान हुकूमत जो तर्ज़ अमल इस्लामी तालीमात मुताबिक़ न आहे। उहे फतवाऊं जारी करे मुस्लमान खे क़तलु कराईंदा आहिनि। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त अफ़गान तालिबान हुकूमत भारतीय जनता पार्टी ऐं RSS जो नज़रियो साॻियो आहे। फितनतुल हिंदुस्तान ऐं फितनतुल ख़वारिज जा सरपरस्त आहे RSS ऐं हेबतुल्ला आहिनि। अफ़गान वज़ीर पंहिंजे पीओ भारत खे रिपोर्टूं ॾियण वेंदा आहिनि।
2: शहीद तो शहीदों के बारे में जो उन्होंने की आई थिंक वो डेप्लोरेबल है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जैसे हम कहें ना नाकाबले फहम है। उसकी वजह यह है कि जो शहादत है ना और शहीद, वो पाकिस्तान की फौज की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके बहादुर बच्चे उधर जाके वतन का दफा करते हैं, शहीद हुए, जिनमें बातचीत करते हैं कि डेड बॉडीज की उन्होंने बात की, उनके जस्ते खाकी की बात की, तो उनकी शहादत के बारे में आप ये बात करें और आप वो बात करें जो कि हिंदुस्तान के जिस बयानी को चलाना चाह रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी, अपना राइट ऑफ लाइफ आपके राइट ऑफ लाइफ के लिए दिया। उसके बच्चे नहीं होते, उसके माँ बाप नहीं, उसकी खुशियां, उसकी ख्वाहिशात नहीं है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई वुड समवन सी इट।
1: जवाननि जे शहादत ते मौलाना जो बयान समुझ खां ॿाहिरि आहे। जवाननि जे शहादत ते जेके ॻाल्हियूं कयूं वयूं उहे भारत बयानी जहिड़ियूं आहिनि। पाक फ़ौज जे तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरीअ जो JUI सरबराह जे बयान ते रदेअमल। DGISPR चयो त मोहतरम सियासतदान खे चवां थो त शऊर ॾियो, माण्हुनि खे मुंझायो न।
0: पाकिस्तान जी फ़ौज असांजी रेड लाइन आहे। सरहद ते बीठल सिपाही घर, माउ पीउ ऐं ॿार छॾे पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त पियो करे। सिपाही असांजो फ़ख्रु आहिनि। उहे कंहिं सियासी बहस जो निशानो न बणजनि घुरिजनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी जो वीडियो पैगाम। बिलावल भुटो ज़रदारी चयो आहे त शहीद फ़ौजियुनि ऐं पुलिस अहलकारनि जे क़ुर्बानीुनि खे कॾहिं बि विसारे नथो सघिजे। जेके पंहिंजे सुभाणे लाइ क़ुर्बान पिया कनि, उन्हनि जी इज़त असांजी ज़िमेवारी आहे।
3: नकवी साहब ने, मैंने सुना था उनका बयान, मैंने आज कवर भी हुआ है मीडिया में, बहुत ज्यादा देखा है। मुझे नहीं पता कि उनके इशारा किस तरफ था। ये जो तजवीज उन्होंने दी वो घुसी पिटी तजवीज है। एक जो बहुत सारी तजावीज दी है उनमें से एक ये दी है, लेकिन ये ऐसी एक जिसको
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: अकेरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
6: फकीरी

0: नीम प्रिकली हीट सॉप
1: झुरियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
0: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

ਰੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕੀ ਹੈ ਰੰਗ ਰਚੇਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੋ

ਕਰ ਅਤੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਅਲੇ ਦਾ।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ढाडो सुठो
3: GFM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फौज के ईरान ते वरन हमलन जो हुकुम डेई छो अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिब अमेरिका इसराइल गडियल तौर से ईरान की तवानाई वारन हंधन के निशानो बनाने की रिथाबंदी कर रहा है। ईरान ते हमला हलंदड़ हफ्ते कें भी वक्त थी सकन था। काबीना के खिताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो हो ता अमेरिका ईरान के खतरनाक तरीके से निशानो बनाई जै बाद ईरान गाल मुहिदे ला मिनतू क हमलो करे भजन वारो दौर खत्म थी चुको। गलत अंदाजो लगाए थींदड़ कार्रवाई जा नतीजा भोगना पवंदा। ईरानी फौज अमेरिका इसराइल के खबरदार करे छो। खातिमुल नबिया हेडक्वार्टर के आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल हई है त अमेरिका संदस भाड़े के फौजन के अंदाजो हों संदन सामान में कफन लाजमी शामिल होने घुर्जे। ईरानी फौज वट दिफाई सलाहियत भी है इरादों में भरपूर जवाब दियण की सग भी मौजूद है। ईरान अमेरिका से जंग में सहकार से बरतानिया के खबरदार कर छो। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राक्ची जो बरतानवी हम मुनसिब से फोन से राबतो। ईरान ते हमले में अमेरिका से सहकार के नाकाबिले कबूल करार दई छो। अब्बास राक्ची ईरान खिलाफ हमलन में सहकार जा बरतानिया के नतीजा भोगना पवंदा। उमान वेझो आबना हुर्मुज में आयल टैंकर ते हमलो। इंजन के नुकसान पहुंचण बाद बहरी टैंकर सफर रोके छो। बरतानवी मेरी टाइम हमले की तस्दीक कर छी। टंडो आदम में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर की बाजियाबी लाए अवामी एक्शन कमेटी पारा शटरबंद हड़ताल मुजाहरों भी किया। अगवाणन मूजिब 10 ढी अग शादादपुर में पुरसरार नमूने शकील बलोच गुम थी वो हो। संदस अगवा जो शक है खेस इन वक्त ताई बाजियाब ना करा वो बाजियाब करा वे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम
2: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
3: ये मुआसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
2: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
2: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
2: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
3: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम दर्द सोजन।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियो चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फौज के ईरान ते वरन हमलन जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिबि अमेरिका ऐं इसराइल गॾियल तौर ते ईरान जी तवानाई वारनि हंधनि खे निशानो बणाइण जी रिथाबंदी करे रहिया आहिनि। ईरान ते हमला हलंदड़ हफ़्ते कंहिं बि वक़्तु थी सघनि था। काबीना खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका ईरान खे ख़तरनाक तरीक़े सां निशानो बणाईंदो, जंहिं बाद ईरान ॻाल्हियुनि ऐं मुआहिदे लाइ मिनतूं कंदो। हमलो करे भॼण वारो दौर ख़तम थी चुको, ग़लति अंदाज़ो लॻाए थींदड़ कार्रवाई जा नतीजा भोगणा पवंदा। ईरानी फ़ौज अमेरिका ऐं इसराइल खे ख़बरदार करे छॾियो। ख़ातिमुल नबिया हेडक्वार्टर जे आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्ही चयो आहे त अमेरिका ऐं संदसि भाड़े जे फ़ौजनि खे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त संदनि सामान में कफ़न लाज़मी शामिल हुअणु घुर्जे। ईरानी फ़ौज वटि दिफ़ाई सलाहियत बि आहे, इरादो ऐं भरपूर जवाब ॾियण जी सघ बि मौजूदु आहे। ईरान अमेरिका सां जंग में सहकार ते बरतानिया खे ख़बरदार करे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकची जो बरतानवी हम मुनसिब सां फ़ोन ते राबितो। ईरान ते हमले में अमेरिका सां सहकार खे नाक़ाबिले क़बूल करार ॾेई छॾियो। अब्बास इराकची चयो त ईरान ख़िलाफ़ हमलनि में सहकार जा बरतानिया खे नतीजा भोगणा पवंदा। कुमान वेझो आबन हरमुज़ में ऑयल टैंकर ते हमिलो, इंजन खे नुक़सान पहुचण बाद बहिरी टैंकर सफ़र रोके छॾियो। برطانوی میری ٹائم حملے جی تصدیق کرے چڑی۔ सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स जे क़याम ऐं सिंध जे विरांगे बाबति नई सियासी मुहिम ते गणती ज़ाहिर करे छॾी। सिंध जे सलामती एतिहाद रेड लाइन करार साना अॻवाणनि चयो आहे त सिंध जे विरांगे तारीख़ी सरहदनि खे तब्दील करण या सूबे में इंतिज़ामी यूनिट क़ाइमु करण बाबति

0: मलकानी शरीफ में पुलिस के घर से चढ़ाई खिलाफ शहरन जो एहतजाज प्राइमरी उस्ताद खालिद हुसैन लगारी के घर से चढ़ाई खिलाफ एहतजाज किया वो मुजाहरीन तो पुलिस ए फूड खाते बिना जवाज उस्ताद के घर से चढ़ाई कई है जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कई वे कंडो आदम में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर की बाजियाब लाए आवामी एक्शन कमेटी पारा शटरबंद हड़ताल मुजाहरों भी किया वो अगवाण मूजिब दह ढी अग शादादपुर में पुरसरार नमूने शकील बलोच गुम थी वो हो संदस अगवा जो शक है खेस इन वक्त तीन बाजियाब ना करा वो बाजियाब कराया वे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या आप आसाबी दर्द जोड़ों की तकलीफ
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
2: जी हाँ
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द जोड़ों का दर्द
2: गर्दन और कमर की तकलीफ
3: पट्ठों के खिंचाव मोच
2: चोट पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
2: तेज आराम मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: हर चप्पा हर गोशा
5: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
4: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

फलक से जमी बिआओ के पी मुंबई का नशा निजात का सामा हो गया सुलेमान नबी के फखरे सुन।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: बाबू भाई बनना मुझे सवार है। बाबू भाई

0: बाबू।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
2: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
2: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
2: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
2: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट। सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: आप ये बात करेंगे कि वो पहली दफा धांधली से वजीर आजम बने थे, तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफा मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था। अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं, तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के? जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30-30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता।
1: वजीर आजम के सलाहकार राणा सनावला जो पीपल्स पार्टी के वार शहीद जुल्फकार भुट्टो के बुल्क टोड़े वजीर आजम थे तानो डे छो। घरू वजीर मोहसिन नकवी से भी तनकीद। मुजफ्फराबाद में चूंड जलसे के खिताब कंदे राणा सनावला चयो त जेकरें तवां नवाज शरीफ के चवंदा त सदाई धांधली करे वजीर आजम थियो आहे त पोइ हिते ही गाल भी थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वजीर आजम थियो हो। वजीर आजम जे वोटन के अवां फारम 47 जो सॾींदा त ॿुधायो सदर के मिलियल वोट कहिड़े फारम जा आहिनि? जरदारी साहब जो ॿियों फर्ज़न चई रहियो आहे त सिस्टम ख़राब थी चुको आहे, अॻिते न वधी रहियो आहे। इक़्तदार जा मज़ा वठण बाद ओचितो खेनि सिस्टम ख़राब लॻण लॻो आहे, जेका अजीब ॻाल्हि आहे।

कश्मीरन के पाकिस्तानी शहरन जड़ा हक दियारण चाहिया थो। कश्मीर जे पानी बिजली जमीन ए बेलन ते पेरियों हक कश्मीर जी अवाम जो आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो आहे ते कश्मीर जे पानी सा समूरो पाकिस्तान रोशन थिए थो। कश्मीर जा घर अस्पतालूं ए स्कूलन के भी फायदो मिलण घुर्जे। कश्मीर जे हर मनसूबे जो हिसाब कश्मीरन जे सामू थियण घुर्जे ए खेन वाजिब हिस्सो मिलण घुर्जे। कश्मीरन के कश्मीर में मिल्कियत जो हक डियारण चाहिया थो।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फौज के ईरान ते वॾनि हमलनि जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिबि अमेरिका ऐं इसराइल गॾियल तौर ते ईरान जी तवानाई वारनि हंधनि खे निशानो बणाइण जी रिथाबंदी करे रहिया आहिनि। ईरान ते हमला हलंदड़ हफ़्ते कंहिं बि वक़्तु थी सघनि था। काबीना खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो हो त अमेरिका ईरान खे ख़तरनाक तरीक़े सां निशानो बणाईंदो, जंहिं बाद ईरान ॻाल्हियुनि ऐं मुआहिदे लाइ मिनतूं कंदो। हमलो करे भॼण वारो दौर ख़तम थी चुको। ग़लति अंदाज़ो लॻाए थींदड़ कार्रवाई जा नतीजा भोगणा पवंदा। ईरानी फ़ौज अमेरिका ऐं इसराइल खे ख़बरदार करे छॾियो। ख़ातमुल नबिया हेडक्वार्टर जे आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्ही चयो आहे त अमेरिका ऐं संदसि भाड़े जे फ़ौजनि खे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त संदनि सामान में कफ़न लाज़मी शामिल हुअण घुर्जे। ईरानी फ़ौज वटि दिफ़ाई सलाहियत बि आहे, इरादो ऐं भरपूर जवाब ॾियण जी सघ बि मौजूदु आहे। ईरान अमेरिका सां जंग में सहकार ते बरतानिया खे ख़बरदार करे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकचीअ जो बरतानवी हमनसिब सां फ़ोन ते राब्तो। ईरान ते हमले में अमेरिका सां सहकार खे नाक़ाबिले क़बूल करार ॾेई छॾियो। अब्बास इराकची चयो त ईरान ख़िलाफ़ हमलनि में सहकार जा बरतानिया खे नतीजा भोगणा पवंदा। ओमान वेझो आबनार मुज़ में आयल टैंकर ते हमिलो, इंजण खे नुक़सान पहुचण बाद बहिरी टैंकर सफ़र रोके छॾियो। बरतानवी मैरीटाइम हमले जी तसदीक करे छॾी। सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट जी क़याम ऐं सिंध जे विरांगे बाबति नई सियासी मुहिम ते गणती ज़ाहिर करे छॾी। सिंध जे सलामती ऐं इताद रेड लाइन करार साना अॻवाणनि चयो आहे।

किरी ॿुॾी फोत थी विया। वारसनि मूजिबि लिंगर रोंबे ते वियल माण्हुनि खे मानी ॾेई वापसि ॻोठु अची रहिया हुआ त रस्ते में पेर तिरकण सबबि पाणी जे खॾ में किरी फोत थिया आहिनि। टिनि लिंगरनि जा लाश घर पहुचण ते अंबड़ियुनि खे दौरा, ॻोठ में सोग छायल आहे।

हैदराबाद जे हाला नाके वारे इलाइक़े भरिसां क़ाइम क़दीमी ॻोठ सुमार मीरबर जे रहवासियुनि जो ॻोठ जो रस्तो बंदि करणु ख़िलाफ़ु एहतजाज। मुज़ाहिरीन क़ौमी शाहराह ते धरणो हणी रोड बंदि करे छॾियो। ॻोठाणनि मूजिबि रस्तो ॻोठ ख़िलाफ़ु साज़िश आहे। रस्तो न खोलियो वियो त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। खरड़ो भरिसां दमवाह में मुबैना तौर औरत ॿुॾी फोत थी वई आहे। लाश हथ अची वियो आहे। ॻोठ दरिया खान बालादी जे रहवासण खुर्शीदा ज़ाल याकूब बालादी मुबैना तौर दमवाह में ॿुॾी फोत थी आहे। कुझु कलाकनि जी ॻोल्हा बाद औरत जो लाश हथ आयो आहे। पुलिस मूजिबि फोती औरत चार ॿारनि जी माउ आहे। वधीक जांच जारी आहे।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM ATH नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के सामने सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो ये प्रोग्राम अगर आप सुन रहे हैं, हमारे साथ साथ मौजूद है और सुनना चाहते हैं, खूबसूरतियाँ हासिल करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि आप किस तरह अपनी खूबसूरती में जो है ना वो इजाफा ला सकते हैं, किस तरह खूबसूरती का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह आप अपनी खोई हुई खूबसूरती को वापस भी ला सकते हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। और कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कैसे इस्तेमाल करने हैं, क्यों करने हैं, ये सब बताएंगे, लेकिन कितना कितनी जल्दी क्या है। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल जी अपना तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, फॉर रीसेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल जी आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में। आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे और साथ ही साथ आप मुझे बताइए कितने सारे लोग हमारे साथ मौजूद है, कहां कहां से आप हमें सुन रहे हैं, और उसके अलावा सुनने वाले जितनी भी समाते हैं सबको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ अगर आपने हाल चाल बताते जाइए, सो डियर लिसनर्स अंत के फहालतुन कैसे ही आपकी हालतुन, उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करी होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली हैं। आपको पता नहीं जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होंगे। इन 2 घंटों में हम करेंगे जी इन्नी वाली बात, तो 2 घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद रहेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, फन करेंगे, बातें होंगी, खूबसूरती की बातें होंगी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी। और यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगी मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुन ही लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम करेंगे जी आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम के साथ, तो बहुत प्यारा कलाम हम सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: अभिजीत जी, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलाम यहाँ पर आप लोगों के समातों की नजर प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे जनाब, अपने होने का एहसास लाएंगे और आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर आज आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है। अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो आजकल मैंने ये चीज बड़ी नोटिस करी है कि मुझे मेरे जो आसपास लोग हैं ना, वो ये बड़ा कह रहे हैं कि भाई काश हम अपने बचपन में चले जाते, बचपन को वो आजकल बड़ा याद कर रहे हैं। या फिर देखा जाए तो बचपन की यादें कुछ वाकई ऐसी यादें होती है जिन्हें अगर हम भूलना भी चाहें तो शायद भूल नहीं पाते। कुछ लोगों का बचपन अच्छा होता है लेकिन कुछ लोगों का अच्छा नहीं भी होता, ये भी चीज है। लेकिन चले इन बातों को थोड़ा साइड पे रखते हैं। मैं सवाल जो आप लोगों से पूछूंगी वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप मुझे ये बताइए, फर्ज कर लीजिए अगर आपको आपका बचपन वापस मिल रहा है, ठीक है, यानी आप अपने बचपन में वापस जा रहे हैं, तो मुझे बताएं सबसे पहले आप क्या करेंगे, कौन से टी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आपने लाइक करना है। कमेंट करना है और शेयर कर देना है, डाटो जरूरी है बाबा, डाटो जरूरी। ओके तो मुझे जल्दी से बताइए अगर आपको मौका मिल रहा हो, अगर आप फर्ज कर ले ऐसा हो जाए कि आप अपने बचपन में चले जाएं, तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझे वो भी बताइए। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिल रहे हैं तो मुझे बताइए आपने कौन सा प्रोडक्ट इंतखाब कर लिया है, कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आप सोच रहे हैं कि भाई जान हम लगाएंगे, भाई जान लगाइए ना, किसने मना किया, जल्दी से लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। इसके साथ साथ आदल हुसैन हमारे साथ मौजूद है जी, सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। ठीक कहते हैं कि बिन किस्मत जा मानो भली केतरो भी अरूज ते पहुंचन पर कदे भी इज्जत इज्जतदार न था थी सगन हिकड़ो पान के जोरी मोतबर सजाईंदड़ आई बियो नियत जा पली त हाओ। सही आयो सही। सूफियाने में तुम्हारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। कहती कैसी हैं आप, मैं ठीक हूं जी, आप बताएं कैसे हैं। और हैप्पी कहती हैं सलाम माई स्वीट आरजे सिद्रा, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है, वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है। मीर तारिक बलोच हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। मीर तारिक बलोच लाड़काना खां जो प्रोग्राम बुधन पया तो मोहब्बत हूँ प्यारे भाजू। और ये हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, आप ही सिद्रा क्या हाल है आपके, अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसा मुस्कुराता रखे। रुखसार मेरी फ्रॉम मीरपुर खास, रुखसार आपको वेलकम कहा जाता है। सूफियान भाई आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू। अच्छा अखलाक भाई आ चुके, अखलाक भाई वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम। पोस्ट को लाइक और शेयर करें जरा। और अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भेण सिद्रा, आज मुझे जन्म दियारो आहे सो जिमिनी खे बुधायो सी तही न्यापो मोकलियो आहे। प्यारा अनवर अली तवा के तुझे जन्म दिन जो दिली मुबारक हो, दुआ आहे तही नौ साल तवाजे जिंदगी में बेशुमार कामयाबियों, सुठी सेहत आई खुशियों वठी अचे। तवाजी जिमिनी एडी सुठी सिंधी गालाई दे असई तो कोंदी गालाई। चलो सही आ सही आ, तवां के हैप्पी बर्थडे हो जे बाबा, असा हैप्पी बर्थडे चवंदा से आई तवां जला मरे गानडो शानडो भी हलाई तासिन तो थोड़ो सबर कयो तवां, ठीक आ आई तवां व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट आई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल भी करे सको था। हजार भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। अदी सिद्रा हाँ जी शो भलो आसो तवां के चौंदा भली करे आया। और हमारे साथ है मोहम्मद ताहिर लुंड भाई, आपको भी वेलकम एंड खुशामदी। नजीर खोसो में सुन रहे हैं बलोचिस्तान से, भाईजान आप क्या कहते हैं, लिखते हैं इंसान खुद को आईने में वही दिखाता है जो देखना चाहता है, ना कि वो जो हकीकत में है। अगर अंदाज अंदर खराबी हो तो तारीफ दिखावा और झूठा हुस्न किसी काम का नहीं होता। हाँ बाबा सही था। और हमारे साथ जी किशोर भाई कहते हैं एतबार की हद पूछते हो तो सुनो, एतबार की हद पूछते हो तो सुनो, दुनिया का कोई भी शख्स हमें तुम्हारे खिलाफ नहीं कर सकता। सलाम अदा हाजिर स्मार्ट हाजिरा एतबार संगठन। एतबार मानू या फिर हो एतबार जो असली हूँ है, सो तवा के चौदह भली कर आया एतबार संगठन। और ऐसे आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए जी, बताइए कौन कौन कहाँ कहाँ से हमारे साथ मौजूद है, टॉपिक को फॉलो कीजिएगा और हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है, हम जरा जाएंगे जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोग लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, बस बैठे रहिएगा हमारे साथ। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाई टेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाई टेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।
1: FM 88 Network, सिंध की आवाज। क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का
1: पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

हमारे साथ जो कि पूरी पूरी टीम बने रहता है। और मैंने आज प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया, यानी कि प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि आप मुझे बता रहे हैं, अगर फर्ज कर लें आपको आपका बचपन वापस मिल जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम सोचते हैं कि भाई काश हमें हमारा बचपन मिल जाए, तो हमने तो ये करना है, हमारी ये चीज अधूरी रह गई थी तो उसको पूरा करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि हम बचपन में छोड़ कर आ चुके हैं, और जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो उन तमाम तर चीजों का जो होता है ना, कोई भी इम्पैक्ट हमारी लाइफ के अंदर नहीं होता। हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम बड़े हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी इतनी ज्यादा अच्छी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो बस हमने जो एंजॉय करना था, जिंदगी अच्छी गुजरी थी वो बचपन में गुजरी थी, बाकी तो खैर जिंदगी है जो जिए जा रहे हैं। ऐसे के साथ साथ आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके मैसेजेस बिल्कुल जी हमें मिलते जा रहे हैं, शामली प्रोग्राम रखे जाएंगे। और उसके अलावा पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा आपने लाइक और शेयर करना है, ठीक है, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। और बताइए कौन कौन कहाँ कहाँ से मर्सद मौजूद है। मैं सर आपको बताने लगी हूँ व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में हम जरा बात करने वाले, क्योंकि आप लोगों को इस चीज बारे में भी मालूम होना चाहिए कि जब आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की खूबसूरती पर कितना अच्छा असर आता है। तो अगर आप भी व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आपके लिए एक बहुत अच्छी क्रीम साबित होने वाली है। बहुत से लोग जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा मसले आ जाते हैं, आपके चेहरे पर रिंकल्स काफी ज्यादा आ चुके हैं, आपके चेहरे पर जो इना रंगत का काफी ज्यादा मसला है, क्योंकि आप पहले तो गोरे होते थे लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा डल होना स्टार्ट हो चुकी है, तो आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो है ना, आप ऑल स्किन टाइप के लिए आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द हज़रात ख़वातीन हर कोई व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम से फायदा उठा सकता है। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो कि आपको आराम से हर जगह मिल रही है, अगर नहीं भी मिल रही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं अवेलेबल, तो आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अवेलेबल कराने वाले हैं। तो बिल्कुल जनाब, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर एवोकाडो है, एलोवेरा है और मिल्क है, ये तमाम चीजें मिलकर ही आप लोगों के स्किन को जो है ना वो हेल्दी बनाती हैं, आपकी स्किन का ख्याल रखते हैं। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लगाते साथ आपकी स्किन जो है वो रिफ्रेश हो जाती है और आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है और आपको एहसास होता है कि आप वाकई कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइटिश का ब्यूटी सोप मिल रहा है, व्हाइटिश का फेस वॉश मिल रहा है, और उसके अलावा डॉक्टर सिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है और व्हाइट एज लवली क्रीम है। ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को ये चीज बता दे चलूं, अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो ये एक नाइट क्रीम है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन सोप अगर आप कोई भी अच्छा सा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए व्हाइट एज का ब्यूटी सोप अवेलेबल है, और साथ ही साथ आपको व्हाइट एज में जो है ना वो फेस वॉश भी मिल रहा है। तो फेस वॉश भी अगर आप लेना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। व्हाइट एज का जो फेस वॉश है ना वो विटामिन सी से तैयार किया गया है, जो कि आपके चेहरे पर अगर विटामिन सी की कमी होगी ना तो उसका भी पूरा इंतजाम है जनाब। और उसके अलावा व्हाइटिश फेस वॉश के अंदर विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई भी ऐड की गई, और उसके अलावा ये इतना क्रीमी फेस वॉश है। तो जनाब आप जरूर अगर कोई अच्छा सा फेस वॉश और अच्छा सा सोप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइटिश फेस वॉश और व्हाइटिश का जो सोप है वो आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए, मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए व्हाइटिश का डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब भी अवेलेबल है मार्केट में। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताते चले। तो व्हाइटिश का ये डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है, अगर आप परचेज करने जाते हैं तो आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब कहकर इसे परचेज कर सकते हैं, जो कि मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि फुल जड़ी बूटियों से इसे तैयार किया गया है। ये जनाब काम ये करता है कि आपके चेहरे पर जो एकनी होते ना, जिद्दी एकनी या फिर एकनी के निशानात, कोई कट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कोई ऐसा निशान बचपन से लेकर आप घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता जो कि हम इस्तेमाल करें तो हमारे चेहरे पर ये निशानात हो, ये जितने भी मार्क्स आ जाते हैं या फिर कोई चोट का निशान भी अगर आपके स्किन के ऊपर मौजूद है तो वो तमाम हट जाएंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आप नाम लेकर तलब कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है, और ये पर्सनली मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि भाई मेरी भी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, मेरे चेहरे पर भी एकनी जो है ना वो आते हैं तो फिर जाने का नाम नहीं लेते, अगर एकनी एक मरतबा आ गया होता है ना तो वो अपना बहुत एक जिद्दी सा निशान भी छोड़कर जाता है। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो कि आपके चेहरे के एकनी का भी खात्मा करता है, आपके चेहरे पर जो निशानात है उनका भी खात्मा करता है, और कुल मिलाकर बहुत अच्छा सा आपको रिजल्ट देता है, आपकी स्किन बेदाग हो जाती है, क्लियर हो जाती है और परफेक्ट आपको हसन मिल जाता है। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आप
आप इस्तेमाल करके देखिए, बहुत अच्छी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे, यानी कि दो मरतबा लगाइए। लगाने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा और अच्छे से अपने हाथों को भी क्लीन कीजिएगा, क्योंकि अच्छे और धुले हुए हाथ जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आपके हाथ जो होते हैं ना वो साफ क्लीन होते हैं, तो आपके चेहरे पर जो है ना ये बार बार आप हाथ लगाते हैं तो उससे भी एक नहीं बनते हैं, तो आप बार बार फेस पर हाथ नहीं लगाया करें। अगर आप हाथ लगा रहे हैं तो आपका हाथ जो है ना वो क्लीन होना चाहिए, अच्छे से आप धोएं अपने हाथ को क्लीन करें, उसके बाद अपने चेहरे पर जो है डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का इस्तेमाल करें। ये जी तमाम वो प्रोडक्ट हैं जो कि ऑल स्किन के मुताबिक तैयार हैं और नेचुरल अज्जा से तैयार किए गए हैं। आप लोगों के लिए कोई भी इसके अंदर ऐसा नुकसानदा अज्जा नहीं एड है कि आप लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत ही सोबर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ट्राई करके देखिएगा। और इसके साथ साथ ना मिलने की सूरत में आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अगर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए हैं, तो नहीं मिल रहे तो उसके लिए आपको नंबर बताते हैं जिसके ऊपर आप रابطہ करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम वाइट एज के प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा सकते हैं। तो नंबर से जरा नोट करते जाइए। ओके जनाब, 233-27-38-4309 और दूसरा नंबर है 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907। ये नंबर से जो कि आपकी आसानी के लिए बिल्कुल जी, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाके ये तमाम प्रोडक्ट जो है ना वो अवेलेबल करा सकते हो। उनको बोलिए भाई साहब ये वाइट एज के तमाम प्रोडक्ट्स आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलनी चाहिए, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपके आसपास जितने भी लोग रहते उनके लिए भी आसानी हो जाए। तो जल्दी जल्दी से आप अवेलेबल कराइए, इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियां हासिल कीजिए। तो जरा हम यहाँ पर गाने भी सुनते जाएंगे, मैंने ये गाने लगाए हैं जरा लिस्ट में, तो हम साथ साथ ये गाने भी सुनेंगे। अज मुझे दिल से तो बस ऐसा ही वारो गानो बुधूं था, छो तो पुराना गाना बुधने में भी पंजो मजो आए। सो ये तमाम खूबसूरत गानो आए जो अच्छो तो मिली करे एंजॉय कयो था, ये तमाम जो मैसेजेस आए वो भी पढ़ी वठूं था।

Anchia. बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। बताइए कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, कहां कहां से सुन रहे हैं। नियाज हुसैन मलिक भाई हमारे साथ है। नियाज हुसैन मलिक भाई क्या कहते हैं, हेलो जी हेलो। और अली मुर्तजा आ चुके हैं, सलाम गुड आफ्टरनून हेव। अच्छा हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, आप बताएं अली मुर्तजा आप कैसे हैं। और मूसा कोरी कहती है सलाम अलैकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। हजार भाई कहते हैं हम भी आपके साथ साथ हैं, शो लाजवाब बेहतरीन जबरदस्त, थैंक यू हजार भाई। अचानक अलावा हजार भाई कहते हैं सिस्टर मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को सलाम, आपकी तबीयत कैसी है। हम सब ठीक हैं माशाल्लाह जी, माशाल्लाह ठीक रहिए और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बराए पूछा तांगा की आयो क्योंकि ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा एहसन अरबानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम इन मुल्ला अस्सलाम मदद कहते हैं ओ माई फेवरेट। मैडम मुस्कान लाड़कना की पहचान कैसी है आप और आपकी तबीयत कैसी है। माँ भी बाबा सफा भली आया, कहाँ बताया कि आयो। अखलाक भाई कहते हैं कि टॉपिक आंसर बचपन वापस न बाबा न वरी मेयू चारणी पवंदी मन ता का मेयू चारा ही था होया।

हमारे साथ मौजूद है लुबी केदी। अस्सलाम वालेकुम सुनो जानी, क्या हाल चाल है? मैं भी आपके साथ साथ बहुत दिनों के बाद आज फिर से शामिल हुई हूँ। कहाँ थी तुम वैसे बताओ तो, अतो न पतो। हे रानी, अच्छा ये असदुल्ला अब्बास हमारे साथ कहते हाय हेलो। नसरुल्ला सुमरो भाई हमारे साथ कहते माँ अगर कोई किताब लिखो तो गेरन के पांजो पांजन के गेर लिखन द सेम हेयर। मामी मामी मामी पांजन एडा कम्मा करी करी करी नफरत कराए छी पान का। मुखे लगंदो ये सिर्फ असा साए पर न बाबा सब बता पाया है और न खाए लावा। अच्छा मीर तारिक बलोच कहते हैं, मीर तारिक बलोच लाड़काना खा मेहरबानी करी असा के सरमन सिंधी जो सॉन्ग बुधाए जो बिल्कुल बिल्कुल मां कोशिश कयां थी ताजी पसंद जा गाना हलाइंदा सी। और मूसा कोरी भाई कहते हैं अदी क्रीम कारे के अच्छो करे थी, बिल्कुल बाबा करे थी, अच्छो करे छींदी सफा चिमकाए छींदी ताजे चेहरन के। सो ता व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे दिस जो बचपन में बुधनासी। बचपन में ऐसा लाइक डिस्को सॉन्ग्स हूँ।

आईटी जो कड़ो प्रोडक्ट लगायो पया यो भी तमो के बुधाईंदा हलो नी। अच्छा किशोर भाई कहते हैं टॉपिक में अपने बचपन के वो हसीन दिन रोज फील करता हूँ। 8, 9 और 10 क्लास के स्कूल के वो दिन जब मेरी छुट्टी होती थी तब अपनी बुक बेड पर फेंक कर उसके स्कूल की गेट पर खड़ा हो जाता था। या भाभी की खबर अगर भी बुधाया थी कुटकी खा रहा तहे ये न सुधर रहता असदुल्ला अब्बास कहते हाय आई लाइक यू शो थैंक यू। वासु भाई आ चुके हैं हेलो वासु भाई। एसन कहते वैसे अज अच्छा चौथा आज आवाज क्लियर न थो अच्छे बियो एफएम गडजी वयो वा अवां सा वही गड हलन थियो ये छो यू छा

बिल्कुल सलाम प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से ये प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, दोनों ही कमाल के प्रोडक्ट्स हैं जनाब। आप कौन से इस्तेमाल करेंगे या फिर कर रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ व्हाइट एज लवली क्रीम के बारे में भी आप लोगों को बताएं, जो कि बहुत ज्यादा एक जरूरी और बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में आप लोगों को मैं जरा बताते चलूं। तो व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है। फेयरनेस क्रीम में वो क्रीमें होती हैं जिन्हें आप हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, मेकअप के तौर पर भी लगा सकते हैं। अगर आप कोई काम काज कर रहे हैं तब भी आप व्हाइट एज लवली क्रीम इस्तेमाल करके बस जाएंगे चुटकियों में रेडी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर आप खवातीन हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि गर्मी का मौसम आ चुका है, गर्मियों में भाई हमसे मेकअप नहीं यूज किया जाता, मेकअप नहीं लगा पाते, तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का थोड़ा सा मिकदार लेकर अपने चेहरे पर अप्लाई कर देंगे, ये चुटकियों में आपको रेडी कर देती है। व्हाइट एज लवली क्रीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये रेडिएंट अल्ट्रा विटामिंस का फार्मूला है जिसके अंदर भाई साहब 3 विटामिंस के कैप्सूल ऐड किए गए हैं। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, यानी कि आप लोगों को खूबसूरती मिले और खूबसूरती के साथ साथ आप लोगों को जो है ना वो आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे। क्योंकि अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम लगाकर बाहर जाते हैं कोई काम काज से, तो आप लोगों के स्किन पर ये जो सूरज के ये खतरनाक असरात आते हैं ना, उनसे भी आपकी स्किन की जो ना वो बचत होती रहे। तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना सिर्फ इसलिए कि आपको खूबसूरती चाहिए बल्कि इसलिए कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि फेयरनेस क्रीम है, इसे बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, मर्द हज़रात ख़वातीन ऑल स्किन टाइप के लिए है। और इसी के साथ साथ मज़े की बात बताऊं, बिल्कुल जी व्हाइट एज लवली क्रीम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में कभी भी, यानी कि सुबह को लगाएं, दोपहर को, रात को, जब आपका दिल करे तब लगाइए, बस आप चुटकियों में रेडी हो जाएंगे और आपकी स्किन ग्लो करती रहेगी और आप हसीन हो चुके होंगे।

हमदर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम कहती माय मोस्ट फेवरेट आरजे चंदा जानी, आप कैसी है? वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है माय स्वीटी। अच्छा सालार खान हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहती, क्या हाल है जी? मैं सालार खान फ्रॉम कोटड़ी। सालार भाई आपको वेलकम कहा जाता है। कहते मैं कोटड़ी से शामिल हुआ हूँ, FB पर शो सुन रहा हूँ, भाईजान आपको वेलकम कहते हैं। और उसके अलावा दर्द दिल कहती है कि मेरी दुआ है आपकी मुबारक आंखों के सब ख्वाब हकीकत ठहरे। आमीन आमीन। वैसे मखाब घट नजर नहीं आया। कहती मैं भी आ गई शो में भागते भागते। अरे भाई चलो बेरो बेरो सापटो अच्छा। नसरुल्ला भाई कहते कि नो प्यारे संती बुधाए खानी मुखे भी लगे ना मैं नहीं प्यार से गल ही नहीं आया पर ये सिर्फ तमाल आए मैं हो गई जिला। वैसे मैं बड़ी कलेशी औरत हूँ।

अच्छा मम्मी ताज़ा लेके दी अस्सलाम वालेकुम की आयो सोचम त अवहां जो हाल अहवाल पुछा अवहां जो शो तमाम सुठो आहे तमा जो आवाज तमाम सुठो आहे एंड दी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम सुठी आहे वाह वाह वाह वाह थैंक यू सो मच मुझो हाल सभा भलो ता बुधा की आयो

अच्छा या बात आहे किशोर भा बिल्कुल असा ओरिजिनल नथा हलाय सगुन त असा कॉपी त हलाय सगुन त यस शातर माइंड अच्छा हैप्पी कहती अगर आज आज मुझे मेरा बचपन मिल जाए तो मैं सबसे पहले क्या करेंगी 6, 7 और 8 के दिन याद करूंगी क्योंकि ये वो दिन है जब मैं और मेरी फ्रेंड्स बहुत मस्ती करती थी और मेरी फ्रेंड्स मुझे बहुत तंग करती थी. योर टॉपिक आंसर. ओके ओके.

0: हजार भाई कहते हैं बचपन अच्छा था, अभी तो बस यादें हैं। हाँ ना, लोबी कहती हैं जी जी खेरा, बस अब रोज शामिल होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। वो बुधाए किथे पई रस्सी वसी। उन खां अलावा वाइटी जो कड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया। उन खां अलावा तव्हां जे अर्जी भुट्टो में मिलन था कोन, कहिड़े कहिड़े जनरल स्टोर से अवेलेबल थिया आहिनि, किथे किथे कोन था मिलनि, इहो बि ॿुधाइजो। जीअं तव्हांखे ॿुधायो वञे त बाबा तव्हां कीअं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से वाइटी जा तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सघो था। सो हाणे त टाइम थियो आहे बाबा वेठूं था न्यूज़ ब्रेक, उन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा। वापसी जल्दी तव्हांजी मोटी नासी, तव्हां काॾे न वञो, इते वेठा हुजो। मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाएं आप भी खूबसूरत हो जाएंगे।
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Analgesic Cream. Dard, Sojan, Varam, Fauri Khatam. Aaj hi Kareebi Store se naam lekar talab karein.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: ये बात करेंगे कि वो पहली दफा दादली से वजीर आजम बने थे, तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफा मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था। अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं, तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के? जरदारी साहब के जो बरखुरदारान है, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक दूसरे बरखुरदार है वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता।
5: वजीर आजम के सलाहकार राणा सनाउल्लाह जो पीपल्स पार्टी से वार शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के मुल्क टोड़े वजीर आजम थियण जो तानो ॾेई छॾियो। घरू वजीर मोहसिन नकवीअ ते बि तनक़ीद। मुज़फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउल्लाह चयो त जेकॾहिं तव्हां नवाज़ शरीफ़ खे चवंदा त सदाई धांधली करे वज़ीर आज़म थियो आहे त पोइ हिते ई ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म थियो हो। वज़ीर आज़म जे वोटनि खे अवां फारम 47 जो सॾींदा त ॿुधायो सदर खे मिलियल वोट कहिड़े फारम जा आहिनि? ज़रदारी साहब जो ॿियो फर्ज़न चई रहियो आहे त सिस्टम ख़राब थी चुको आहे, अॻिते न वधी रहियो आहे, इक़्तदार जा मज़ा वठण बाद ओचितो खेनि सिस्टम ख़राब लॻण लॻो आहे, जेका अजीब ॻाल्हि आहे। नवाज़ शरीफ, शहबाज़ शरीफ ऐं मरियम नवाज़ खे धांधली करे खटरायो वियो। ख़ैरात में मिलियल सीटनि वारा बि पीपल्स पार्टीअ ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि। सिंध जे सूबाई वज़ीर सैद गनी चयो आहे त बंगलादेश थाने में शहीद भुट्टो मुलविस हुजे हा त ज़िया खे कूड़े केस में फासाए ॾियण बदिरां बंगलादेश थाने वारे केस में फाही ॾे हा। सूबा ठाहिण जो इख़्तियार कंहिं फ़र्द या पार्टी वटि न पर असेंबलियुनि वटि आहिनि। सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाईंदा नओं सूबो नथा चाहिनि। मोहसिन नकवी भली जेको चवे संदसि ॻाल्हि मञण जा पाबंद न आहियूं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
2: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
2: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
2: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
2: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
2: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सो या टेंशन न कयो असा वांगे अमीर हुंदा उहे भी बाबा पैकेज अथन तरी तो कमेंट कन था ना बिना पैकेज जे कमेंट थिंदो अच्छा भला बुदायो तो सही मुखे अच्छा मोहसिन आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम मोहसिन अली बिरोही फ्रॉम मोर मीरो खान चौक लाड़काना से ओके जी ओके मोहसिन आपको वेलकम कहते आमिर खान महेसर ही गोठ जक्रिया महेसर वालेकुम अस्सलाम मास्टर मंजूर जो गानो हलायूं था बाबा हलायूं था वेओ तो सही साथ पटियो अच्छा सही गानो अनवर भाई कहते हैं घर के काम चल रहे ना इसीलिए बिजी रहता हूँ आज काम का आखिरी दिन है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा मतलब एक काम है ना यानी हमने अपने घर पर थोड़ा सा काम करवाया मतलब थोड़ा सा उसमें इतने दिल लग गए ना इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैं अब ये दुआ करती हूँ अल्लाह करे ऐसा करे मजदूर जो मुंह न ॾिसूं ॾाढी घी लॻंदा आहिनि तोबा उन्हनि माण्हुनि खे शाबस जेके स्टार्टिंग खां वठी घर ठाराहिनि था अगली तव्हांजे सब्र खे सलाम आहे

अच्छा मोहम्मद वारिस जूनी जो है वालेकुम अस्सलाम तव्हांजो प्रोग्राम कहिड़े वक़्त हलंदो आहे प्रोग्राम जा टॉपिक छा आहे अच्छा प्रोग्राम जेको आहे उहो डेली हलंदो आहे 1 बजे खां 3 बजे ताईं जुमो बस असांजी मोकल हूंदो आहे बाकी असांजो प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड आहे सो तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में ॿुधायो वेंदो आहे सो थैंक यू सो मच तव्हां सां गॾु मौजूदु आहियो पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो बुधायो बाबा केर केर किथां किथां से सगेट मौजूद है एड़ो प्रोडक्ट लगायो आ ई पांजी खूबसूरती किथे पहुंचाई थव बुधायो त जी खबर पवे उन के अलावा टाइम थे बाबा इते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं ता वापसी जल्दी मोटी तमारी नासी तमा करी न मजो इते बैठा हो जो मा ओ हिय वनी ओ हिय मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए

0: GAFM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है.
2: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है.
2: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए.
2: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार.
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है. फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
3: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ मिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान. GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

जरा हम मैसेजेस की जाने पा जाते हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी सैटरडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्य सिस्टर सिद्रा मुस्कान जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। फजीला सिंधी हमारे साथ है। फजीला सिंधी, कहती टॉपिक माइंड में तो बहुत सी बातें हैं, कौन सी बताऊं ये सोच रही हूं। कुछ भी बता दो, इतनी भी बड़ी क्या बात है। और ये हमारे साथ बाजी सिद्रा, क्या हाल है आपके? सो वेरी वेरी नाइस है। मिर्पुर खासा खाना उम्मीद अली लाशारी हमारे साथ है। सलाम चौवन कुमार, खालिद जुड़ेंचो, अदील अबड़ो, अंकल गफूर और खालिद लाशारी अजीज सोलंगी के नाम चले जी, बहुत शुक्रिया। और कहते क्या हाल है आपके सिद्रा बाजी, शो आपका वेरी वेरी नाइस है। मिर्पुर खासे उम्मीद भाई है। दोबारा से आपने मैसेज कर दिया, उसके लिए थैंक यू। महबूब अली मोरोसी हमारे साथ है, कहते हमारी प्यारी सिस्टर सिद्रा मुस्कान अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हमेशा मुस्कुराती रही, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, वीआईपी प्रोग्राम, ओहो क्या बात है, सो नाइस ऑफ यू सिस्टर। फायजा लेकर नया सॉन्ग सुनाओ, थैंक्स फरमाइश अली रजा भंड। अली रजा भंड भात आज मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुधो पया, फायजा बुधराई था तुम्हारे टाइम बची हुए मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुधो पया। और मकसूद मला कहते मेरापुर से, आदाब आदाब सिद्रा मुस्कान, मास्टर मजदूर का गाना सुनाना, हथन सा दिल ले दई तो खेवेठा से प्यारा बुधो हुंदा। और मिर्पुर खास अब्दुल्ला महर कहते अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, ओ ये जियो करे।

पैनल ते कंहिंजो खाली मैसेज मिलियो आहे मूंखे अगरि न पढ़ां त समझी वञो इहो ओ इहो मैसेज मुंहिंजो हुयव समझो था और हमारे साथ रसूलाबाद खां आबिद हुसैन शंबानी भाई वालेकुम असलाम चापे हिक मां अमर जी झोली मां हा ओके जी तव्हांजे ॾींहं जी शुरूआत अमर जी झोली सां थिए हा ओके ओके ॾाढो भलो तव्हां मैसेज कयो आहे अॻिते थोरी ॻाल्हि थोरी समुझ में न आई और हुन खां अलावा तव्हां ॿियो मैसेज कयो आहे बचपन में मूं ट्रैक्टर जी स्पीकर ते जेको परे खां पहिरियों गानो ॿुधंदो हो जलाल जी आवाज़ में उहो ॿुधंदुसि वाह वाह वाह मकसूद मला कहते हैं जवाब है आई एम सॉरी मैं अपने बचपन में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने अपने बचपन में बहुत लड़ाइयां की हैं अगर गया वापस तो वो लड़के मुझे छोड़ेंगे नहीं अड़ा कम कया बचपन में ताकि अन्या बहुत होते अजा सजाद अली जमाली है नवाब शाह से सॉन्ग प्ले करना ममताज मलिक भा मैं कोशिश क्या थी न तो 5 बजे वाले प्रोग्रामों में बुद्धि बैठे

क्या बात है, बहुत ही हसीन सा गाना सुना। एक और हसीन सा गाना हमारे लिस्ट में है, तो आइए जरा इस गाने को भी सुन लेते हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बताइए।

अच्छा एस के हमें सुन रहे हैं मोरो से, आपने हमें ज्वाइन किया है और आपके साथ हैं जी मानिक अबड़ो, सदाम अबड़ो, दिलबर और उसके बाद मैं से थोड़ा इधर उधर हो गया है आपका, तो थैंक यू सो मच आप सब भाइयों को वेलकम कहते हैं। अच्छा गो टू गुलाब लगारी खां, साबिर लगारी हमारे साथ है, सुल्तान लगारी, रिजवान लगारी, वालेकुम अस्सलाम वेलकम, कहते शो नाइस है प्लीज प्ले सूर्या सुमरो, मैं कोशिश करती हूँ भाई आपका गाना भी लगाएंगे। और जाग जाने चाचू हमारे साथ है, कहते हैं प्लीज प्ले ओके। अंकल तुम्हारा गानो डेडिकेट कर हुआ है अजरा खुसो जे नाले, सजा चमाली कहते नवाब शाह से सॉन्ग प्ले करें, मुमताज मलाई हाजिर हाजिर भाई।

आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। इस्तेमाल कीजिए व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ताकि आपको अंदाजा हो सके कि मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है जिनका आप इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी खूबसूरती का ख्याल रख सकते हैं बल्कि आप अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए लॉक भी कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको बताए जाते हैं जो आपकी खूबसूरती में ऐसा होता है कि जल्दी में आपको गोरा बना देते हैं लेकिन बाद में उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपके स्किन पर आ जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए जो कि मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई है और हाँ डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार की गई है। बस सो तमाम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था बाबा कोई भी एड़ो ना तो तमाम जी स्किन खराब थी या कोई एड़ो मसलो अची वे तमाम सफा बेफिक्र थी करे लगाए सको था। अच्छा हैप्पी कहती हैं आरजे आपका बचपन कैसा गुजरा, अच्छा था या बुरा? मेरा बचपन बस ठीक ठाक ही था, ना बुरा था ना अच्छा था। लेकिन देखा जाए तो मैं अपने कॉलेज के डेज को बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मैं हमेशा मेरा पूरा जो बचपन था वो जरा मैं इंट्रोवर्ट टाइप की बंदी हूँ। मैं ज्यादातर लोगों में जो है ना वो मिलकर बैठ नहीं सकती, मुझे थोड़ा सा फोबिया है ऐसा समझ ले। तो कॉलेज के टाइम में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया लोगों को फेस करने का, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, तो ऐसा वाला सीन। कॉलेज टाइम मेरा ऐसा समझ लाइफ का बेस्ट टाइम था।

ज़ाहिर करे छॾी। सिंध जे सलामती ऐं इतिहाद रेड लाइन करार साना अॻवाणनि चयो आहे त सिंध जे विरांगे तारीख़ी सरहदनि खे तब्दील करण या सूबे में इंतिज़ामी यूनिट क़ाइम करण बाबति सियासी मोहम क़बूलण जोगो नाहे। लाड़काणे वेझो ॿिनि भाइरनि समेत टे नींगर पाणीअ जे खॾु में ॿुॾी फोत थी विया आहिनि। ॻोठु पीर झांगारा में 5 सालनि जो मोहम्मद हसीब, 6 सालनि जो सैयद ऐं संदसि भाउ 3 सालनि जो रिज़वान कलोड़ो पेर तिरकण सबबि पाणीअ जे खॾु में किरी ॿोॾी फोत थी विया आहिनि। वारसनि मूजिबि नींगर रोंबे ते वियल माण्हुनि खे मानी ॾेई वापसि ॻोठु अची रहिया हुआ त रस्ते में पेर तिरकण सबबि पाणीअ जे खॾु में किरी फोत थिया आहिनि। 3 नींगरनि जा लाश घर पहुचण ते अंबड़ियुनि खे दौरा, ॻोठ में सोग छायल आहे। हैदराबाद जे हाला नाके वारे इलाइक़े भरिसां क़ाइमु क़दीमी ॻोठु सुमार मीर बहर जे रहवासियुनि जो ॻोठ जो रस्तो बंदि करणु ख़िलाफ़ु एहतजाज। मुज़ाहिरीन क़ौमी शाहराह ते धरणो हणी रोड बंदि करे छॾियो। ॻोठाणनि मूजिबि रस्तो बंदि करणु ॻोठ ख़िलाफ़ु साज़िश आहे। रस्तो न खोलियो वियो त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। शिकारपुर में 10 सालनि जी नींगरीअ सां घर में ज़्यादती, इस्पताल दाख़िल, डॉक्टरणी नींगरीअ सां ज़्यादतीअ जी तसदीक करे छॾी। थारूपुर मोहले में 10 सालनि जी नींगरीअ खे जवाबदार घर में अकेलो ॾिसी ज़्यादतीअ जो निशानो बणायो। ज़्यादतीअ जो निशानो बणियल नींगरीअ जे वालिद चयो आहे त धीअ खे 1000 खां सूमरो ज़्यादतीअ जो निशानो बणायो आहे। सकरण वेझो क़ौमी शाहराह ते फुर मज़हमत ते मोटरसाइकिल सवार नौजवान क़तल। नामालूम हथियारबंदनि ॻोठु बिलावल राहू वासी नूर दाद राहू खे क़तल कयो। फोती सां गॾु वेंदड़ वहीद राहू ॿुधायो त सकरण खां ॻोठु वञी रहिया हुआसीं त फौरन मोटरसाइकिल फुरण जी कोशिशि कई, मज़हमत ते फायरिंग कई। नूर दाद गोलियूं लॻण सबबि फोत थियो।

रियासी वेझो मोबाइल आ तो पुलिस के ड्रप खा रोड़ी केनाल में ट्रपो डींदड़ नौजवान जो लाश हथ 20 साल के नौजवान नादिर कलोड़ो जो लाश 18 कलाक बाद मिलो फोती नौजवान के भाव मोकिम कलोड़ो इल्जाम आयो तो संदस भाव के भेरिया सिटी पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कई जै दौरान हु जान बचाने लाए रोड़ी केनाल में लही वो तेज वेकरे में बुढ़ी फोत थो है जिम्मेवार एहलकार खिलाफ कार्रवाई कई वे पुलिस फोती नौजवान के वारसन के इल्जाम के रद्द कर छो सिंध में पानी के खोट खिलाफ आबादगार एतजाज जो सिलसिलो जारी है। बदीन के मीरवा सब डिवीजन में गुजरियल छह महीनों का पानी के खोट खिलाफ आबादगार की अलामती भुख हड़ताल आपाशी अमलदार करप्शन ए पानी विक्रो कर इल्जाम पोछड़ तीन पानी फराम कर मुतालबो भान सईदाबाद में दायम ब्रांच में पानी के तरादू खोट खिलाफ आबादगार मुजाहरों आबादगार है दरिया में चाड़ बावजूद शाखन में पानी ना पानी फराम किया वे लाड़कानो पुलिस पारा दहशत की अलामत बढ़ियल धाड़ियल शेर खान उर्फ शेरू डहाणी के जख्मी हालत में गिरफ्तार करने की दावा पुलिस मूजिब धाड़ियल शेर खान उर्फ शेरू डहाणी से 80 लख इनाम भी रखल है। शेरू डहाणी के रतो देरो की हद शाह लाड़े वे इलाके में मुकाबलेबाज जख्मी हालत में गिरफ्तार किया वो है।

0: ऐं जो खेड़े सो खाए जो नारो हणंदड़ शहीद शाह इनायत जी 318 उर्स जो वे ॾींहं वारियूं तकरीबूं जारी मुल्क जे कुंड कुर्छ मां पांधीअड़ा पहुतल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ आया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
2: इहा वाकई

0: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
0: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
0: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेजे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointments.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil e aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ऐं मरियम नवाज खे धांधली करे खटरायो वियो। खैरात में मिलियल सीटनि वारा पीपल्स पार्टीअ ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि। सिंध जे सूबाई वज़ीर सैद गनी चयो आहे त बंगलादेश थाने में शहीद भुट्टो मुलविस हुजे हा त ज़िया खे कहिड़े कूड़े केस में फाही ॾियण बदिरां बंगलादेश थाने वारे केस में फाही ॾिए हा। सूबा ठाहिण जो इख़्तियार कंहिं फर्द या पार्टी वटि न पर असेंबलियुनि वटि आहिनि। सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा नओं सूबो नथा चाहिनि। मोहसिन नकवी भले जेको बि चवे संदसि ॻाल्हि मञण जा पाबंद आहियूं। पीपल्स पार्टी घटि में घटि करप्शन ऐं इख़लाकियात ते तालीम जे बजट वधाई आहे। पंजाब जे सूबाई वज़ीरनि जे पीपल्स पार्टीअ ते तनक़ीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पंजाब जे वज़ीरनि चयो त कराचीअ जा शहरी पाणीअ लाइ परेशान आहिनि। शहर जा ग्रीन बैलेट ख़तम थी चुका आहिनि। सिहत जो सिंध में ख़राब हाल आहे। सिंध जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। मरियम नवाज़ ते तनक़ीद करण बदिरां मरियम नवाज़ जेतिरो कम त करे ॾेखारियो। नवां सूबा असांजी ख़्वाहिश न पर पाकिस्तान जी मजबूरी आहे। पाकिस्तान में मसलनि जो तूफ़ान आहे। हिकु वफ़ाक ऐं चार सूबनि वारो सिस्टम सबबि वसीले घटिजी विया आहिनि। एम क्यू एम अॻवान ऐं वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त महरूमियुनि सबबि माण्हू रियासत ख़िलाफ़ थी रहिया आहिनि। बद इंतिज़ामी सबबि मुल्क में मसला वधी रहिया आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ़ौज खे ईरान ते वॾनि हमलनि जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिबि अमेरिका ऐं इसराइल गॾियल तौर ते ईरान जी तवानाई वारनि हंधनि खे निशानो बणाइण जी रिथाबंदी करे रहिया आहिनि। ईरान ते हमला हलंदड़ हफ़्ते कंहिं बि वक़्तु थी सघनि था। काबीना खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो हो त अमेरिका ईरान खे ख़तरनाक तरीक़े सां निशानो बणाईंदो, जंहिं बाद ईरान ॻाल्हियुनि ऐं मुआदे लाइ मिनतूं कंदो। हमलो करे भॼण वारो दौर ख़तम थी चुको। ग़लति अंदाज़ो लॻाए थींदड़ कार्रवाई जा नतीजा भोगणा पवंदा। ईरानी फ़ौज अमेरिका ऐं इसराइल खे ख़बरदार करे छॾियो। ख़ातिमुल नबिया हेडक्वार्टर जे आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही चयो आहे त अमेरिका ऐं संदसि भाड़े जे फ़ौजनि खे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त संदनि सामान में कफ़न लाज़मी शामिल हुअणु घुरिजे। ईरानी फ़ौज वटि दिफ़ाई सलाहियत बि आहे। इरादो ऐं भरपूर जवाब ॾियण जी सघ बि मौजूदु आहे। ओमान वेझो आपने हरमुज़ में आयल टैंकर ते हमलो। इंजण खे नुक़सान पहुचण बाद बहरी टैंकर सफ़र रोके छॾियो। बरतानवी मेरी टाइम हमले जी तस्दीक करे छॾी। जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम जी हुकूमत ते सख़्त तनक़ीद। 7 अगस्त ते समूरे मुल्क में एहतजाज जो ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हाफिज़ नईम चयो त हुकूमत रोज़ पेट्रोल महांगो करे अवाम जो कतलेआम करे रही आहे। बिजली समेत खाद खुराक जूं शयूं बि महांगियूं आहिनि। 7 अगस्त ते एहतजाज कयो वेंदो। लाड़काणे वेझो ॿिनि भाइरनि समेत टे नींगर पाणीअ जे खॾ में ॿुॾी फोत। ॻोठ में पेर तिरकण सबबि झांगारा में 5 सालनि जो मोहम्मद हसीब, 6 सालनि जो सईद ऐं संदसि भाउ 3 सालनि जो रिज़वान कलोड़ो पेर तिरकण सबबि पाणी जे खॾ में किरी ॿुॾी फोत थी विया। वारसनि मूजिबि नींगर रोंबे ते वयल माण्हुनि खे मानी ॾेई वापसि ॻोठ अची रहिया हुआ त रस्ते में पेर तिरकण सबबि पाणीअ जे खॾ में किरी फोत थिया आहिनि। टिनि नींगरनि जा लाश घर पहुचण ते अमड़ियुनि खे दौरा

0: ऐं जो खेड़े सो खाए जो नारो हणंदड़ शहीद शाह इनायत जे 214 उर्स जो वे ॾींहं वारियूं तकरीबूं जारी मुल्क जे कुंड कुर्छ मां पांधीअड़ा पहुतल।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GAFM 88
3: नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

राजा, पर बाव हाथों वांगे मोहब्बत में

0: सिक्योरिटी फोर्सेस जो उत्तर वजिस्तान में ऑपरेशन पंजा खारजी मारजी व्या दहशतगर्दन सा विढ़ दे पाक फौज जो मेजर भी शहीद ISPR मौजिब सिक्योरिटी फोर्सेस से गुजे कार्रवाई कदे पंज भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दन के जन्म बेड़ो के कयो शदीद फायरिंग जी डेवट में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद थी वियो मेजर हाफिज एहसान इलाही पेंजे दस्तन जी क्यादत कदे बहादुरी से विढ़े शहादत जो जाम नोश किया मारजी वेल खारजी दहशतगर्दन वटा हथियार ए बारूदी मवाद हथ के वो दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून लागू कदर इदार बेगुनाह शहरियन खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाई में मुलविस हुआ। पाक चीन दोस्ती आसमाय लाइ हर वक्त ते पूरो लहंदड़ है। पाक चीन फौज भी इलाकई अमन ए गडियल मुफादन के तहफुज लाइ हकीकी भाईवार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वीं सालगिरह वाली तकरीब पर खिताब फील्ड मार्शल पाक चीन दोस्ती मुनफरद आसमायल है इलाकई आलमी चैलेंजेस बावजूद मजबूत रही है। तकरीब पर खिताब कदे चीनी सफीर दहशतगर्द के खिलाफ वेड़ में पाक फौज की कुर्बानियों की सारा कदे पाकिस्तान से भाईवारी के मजबूत किया। तकरीब दौरान चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह जो केक काटो वो तकरीब में तिन्ही हथियारबंद फौजन के सीनियर ऑफिसर भी शिरकत कई।
1: ये बात करेंगे कि वो पहली दफा दांजली से वजीर आजम बने थे तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफा मुल्क तोड़ के भी वजीर आजम बना था। अगर वजीर आजम ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के। जरदारी साहब के जो बरखुरदारान है एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं एक दूसरे बरखुरदार है वो फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई इस सिस्टम में तुमने 30-30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है ये चल नहीं सकता।
0: वज़ीर आज़म के सलाहकार राणा सनाउल्लाह जो पीपल्स पार्टी तेवार शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो मथा मुल्क टोड़े वज़ीर आज़म थियण जो इल्ज़ाम भी लगाए छो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ते भी तनकीद मुज़फ़्फ़राबाद में चूंड जलसे के खिताब कदे राणा सनाउल्लाह चयो तो जेकॾहिं तव्हां नवाज़ शरीफ खे चवंदा त सदाई धांधली करे वज़ीर आज़म थियो आहे त पोइ हिते ही ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म थियो हो। वज़ीर आज़म जे वोटनि खे फॉर्म 47 जो सड़ीदार त बुधायो सदर के मिलल वोट कड़े फॉर्म जा हैं। सरदारी साहब जो बो फर्जन चई रो है त सिस्टम खत्म थी चुको है अगते न वधी रो है इक़्तदार जा मजा वठण बाद ओचतो खेन सिस्टम खराब लगन लगो है जेका अजीब गाल है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ए मरियम नवाज के धांधली कर खटरा हो खैरात में मिलियल सीटन वारा भी पीपल्स पार्टी से तनकीद कर रहा है। सिंध के सूबाई वजीर सईद खानी है तो बंग्लादेश थाने में शहीद भुट्टो मुलविस हुए।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
4: न अदा असाबनि जो सूर जोड़न जो सूर कंध ऐं चेल जी तकलीफ़ सट धक लॻण पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हा फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अली वेजे स्टोर तां नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
6: सुनते रहो GFM 90.8।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ

0: तेरे बाद हम तुम्हारे नहीं रहे,
1: क्योंकि मैं क्रीन हूं।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: थारूपुर महले में डहन सालन जी निंगरी के वेशी जवाबदार घर में अकेलो डिसी ज्याती जो निशानो बनायो निंगरी अस्पताल मुंतकिल डॉक्टरानी पारा ज्याती जी तस्दीक निंगरी जे वालिद चयो आहे त धीअ खे हज़ार खान सूमरो ज्याती जो निशानो बनायो आहे। मीरपुर खास जे हीराबाद वारे इलाइक़े में भी एक जवाबदार बिन निंगरीन के मुबैना ज्याती जो निशानो बनायो। मुतासिर निंगरीन जे वालिद मोहम्मद आबिद जी फरियाद ते केस दाखिल पुलिस कार्रवाई कंदे इल्ज़ाम हेठ आयल जवाबदार खान मोहम्मद उर्फ खानू के गिरफ्तार करे वरतो। पुलिस जो चवण है तो मेडिकल रिपोर्ट अचण बाद वधी कार्रवाई कई वेंदी। सिंध में पानी की खोट खिलाफ आबादगार के एहतजाज जो सिलसिलो जारी। बदीन के मीरवा सबब सब डिवीजन में गुजरल छह महीनों का पानी की खोट खिलाफ आबादगार सरापा एहतजाज बणियल। आपाशी अमलदार करप्शन ए पानी विक्रो करण जा इल्ज़ाम पूछड़ ताई पानी फराम करण जो मुतालबो। बान सईदाबाद में भी आबादगार पारा एहतजाज कयो पानी डेण जो मुतालबो।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में टे जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी।
2: KTN News।
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश फकीरी एनर्जेसिक क्रीम
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
4: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: आप सुन रहे हैं
6: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।